मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सी तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चित न आवन।

जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर देखे कीता आपना, ज्यों तिस दी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पात साहु साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई, आसा महला पहला, सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड वड्डा डीठा हुए, कीमत पाए न कहया जाए,

आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकर आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए।

खसम विसार हैते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास।

शैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधु जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोए न किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊडावे सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन जुगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया।

और सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा।

दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर, हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना।

वह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक।

पढ़े बहुसिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन।

कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तेतो सर्वर

कह न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरण कै, जन्म मृता जात रंग माया कह रहा।

चरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु। आप हाथ दै मोहे बचावहु, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक

पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू।

जिने आप सुवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह वध कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंच

आए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकरख कर

भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है, रच्छा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब होई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती पाची दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई प्याए फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई से सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दया रहता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्र आत्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार तैंतर के घर से बोलो जी वाहेगुरु। आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया देई चलाई तेग वाहे दे के डिड़की तेना प्यारे से प्यारे की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए कोपड़ियां लवाइया चरखियां से चले आर न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा किसी ने केसा सुरक्षा संघ दिखाया तेना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेताव है चित आवन का सदका सर सुखो है जहां जहां गुरु खालसा साहब तह रचरियात देखते की फतेह ब्रत की पहच पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत फत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु जी मैं आज पंच सदा शाह दार दियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी ने पंथ को छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन के दार से सेवा समाज का दान अपने खालसा जी ने बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी दोए कर जोड़ करो अरदास कुछ पावे ताने रास हे गुरु महाराज जी आपके चरण कामना अरदास आपकी बख्शिश हुई आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमनी साहब संपूर्ण पाठ दिता ऐस वे संध्या समा जान के आपके चरण जोरदार रहरास पाठ कि कृपा करो भूइया भुलन चुकों की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत निशानी की बात करो जी अगो तो शोध से पितर बाणी चार बार बुद्धि बख्शिश करो वीर महाराज इस खुशी में आप दी बख्शियां दातों में पितर कलाम शादी देगा तैयार कर हाथ दतार आप दी भोग लाओ शीत प्रसाद सार संकत रखना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेचा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। ईवन आज आप दख्शिया दातों जो नगर टुट सवारी प्रबंध करने ददार आपके चैनल सेवा कर रहे सारे टैलिया सिंगा सिंगणियों चंदरुस्ती बख्शो चाडी कला बख्शो सदा आइए सदर अपने चैनल सेवा की भावना बख्शे बाता करो ईवन आज कृपा करो जी। अमृत वेल को लैके दर से आइए साफ संगतान की हाजिरी दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगत दर से फिर फिर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। धन धन गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ साहब जीओ आपके चरण कामना दरदास बख्शी सेवा करो दो बख्शे ने अजी आप दर के सवाल है भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी उन्हें सेवा वाले जिन्हें जन्मदिन की खुशी में अच्छे परिवार की कंज सुख शांति चढ़ी कला वास्ते परिवार के सारे कार्यों की संपूर्णता वास्ते परिवार के सारे कार्य राज करने वास्ते बेनती करते हैं तहार परिवार को बेहद माया आपके चरण भेटा की प्रवान दार बख्श करते भाई ओंकार सिंह तंदुरुस्त बख्शो लंबी आयु बख्शो अगर सिक्खी नाम दार इस तरह अपने चरण सदा सेवा की भावना में कृपालता करो सेवा की दाज बख्शे करो तार मेहर करो मेहर प्रयास सारे परिवार के सिर से रखो अगर सारे परिवार तंदुरुस्त लोग शांति चढ़ी कला करो परिवार में एकता स्वागत प्याज बख्शी करके सत्य दाज बख्शो तार कृपा करो सत्य पातशाह परिवार में चंद कला बख्शी करनी मेहर प्रयास तार मेरे प्रयास परिवार के सिर रखो सेवकों के सारे रहते कार सार की चरण दरवाजे बनाओ सेवक परिवार के सारे कार राज करो परिवार दुभकामनाओं आसमान पूरी कर रही दर्जा की लाजपत रखो हर प्रकार की रखा बजट वादा करो जी गुरु की विवाह मेरा ने कराओ इतने तार जी हो खालसा पंथ सेवकों एकता विभाग प्यार की बख्शी करके सत दाल बख्शो चैनल न जोड़ो गुरुमण का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह बख्शो की वादा करो जी दार जी हो दूर दराज कार बैठी पैदा की सवन कर रही सारी संगत हाजिर घड़िया लेके लाओ तारण बख्शी की संगत बख्शे
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਭ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਘਰ ਜਵਾਬ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਰਵਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਰਨ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ ਬਿਹਤਰ ਗੁਮਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਥਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਾਲ ਕੇ ਚਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਓ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਤੂ ਸੇਵਾ ਰਾਣੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਗੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡਾ

0: सारी संगत प्यार सहत आखो जी
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: फिर आखो जी
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: परम सम्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी। हां जी, गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी, जुग जुग अटल दसां पातशाहियां दी जग दी जोत दयालु कृपालु मेहरबान आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बारगाह विच छत्र छाया हेठ सतगुरु जी दी साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी सर्वत्र माई भाई गुरसिख बहुत ही वड्डिया भागा वाले हो। गुरु की अपार अपार अपार बख्शिश प्राप्त हुंदी है, चिम चिम वरस अमृत धारा गुरु की अमृत बाणी दी दात रोजाना प्राप्त हुंदी है। सतगुरु जी दयालु कृपालु मेहरबान ने गुरु सवारी संगत जी सतगुरु जी दे अंदर किन्नी क दया है। श्री मान भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी ने एक कबित बड़ा प्यारा कलम बंद किया है, कहिंदे ने कोई अंब दी मिठास जड़ी है बहुत ज्यादा हुंदी है, दुसहरी अंब होवे और बिलकुल रसिया पक्का होवे ते जिस वेले उन्हों चूपदा है बंदा कट्टन तो बिना उदा रस जेड़ा बहुत ज्यादा हुंदा है, पर ओ रस अंब वाला कोई इमली चो लैना चाहे तो बिलकुल नहीं मिलना। आखो सतनाम श्री
1: वाहेगुरु,
0: बिलकुल नहीं मिलना। बात बड़ी प्यारी है। दूसरा बोल भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी कहिंदे ने पिता और पुत्र जा धी पिता दे नाल बहुत ज्यादा स्नेह है, प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और प्यो भी बाप भी रज रज के अपने बच्चिया नू प्यार दंदा है। अगर ओ प्यार जेड़ा है पिता जी वाला बाप वाला गुवांडी वाला कहे भी मैं तेरे बाप वाला प्यार तेनू दे दिया, वो कदे प्यार पड़ोसी दे कोलो नहीं मिल सकता, जिन्ना मर्जी जोर ला लियो। एक बात होर भाई गुरुदास साहब जी कहिंदे ने समुंदर दे विच्चों अनेक तरह के पदार्थ मिल जाते ने, हीरे जवाहर मिल जाते, बहुत कुछ मिल जाता टुब्बी मारन वाला होवे। अगर जे कोई कवे भी वह मैनु छप्पड़ चो मिल जाए तो वह कदे प्राप्ति नहीं होंदे। मौले धार मीह पैंदा होवे ते कोई ए प्राणी कवे भी मैं खूह दे पानी नाल प्रसन्न हो जावे तां इवें बात नहीं है, मीह दा पानी तां मीह दा पानी है। भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी कहिंदे ने संसार विच झाती मारीए 33 करोड़ देवी देवते सब सत्कार योग ने, सब सत्कार योग ने, वड्डिया तो वड्डे ने, पर जिन्नी दया जिन्नी कृपा जिन्नी बख्शिश मेरे सतगुरु जी दे घर तो हुंदी उन्नी किधरे भी नहीं हुंदी। तुसीं कहो जी वो किवें? मेरे ख्याल परसों की गल है, मैं लंगर च बैठा जिस वेले आसा जी की वार का कीर्तन शुरू होया ना, ते उस वेले रसीली जी आवाज नाल सत्कार योग रागी सिंह साहिबान जी भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी की रसना तो मैं बैठा बैठा शब्द सुनी गया, पिता को प्यार ना परोसी पह पाई। इन्होंने मेरे ख्याल टेक शब्द ही रखी सी। ते ए शब्द जेड़ा है भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी का कविता है, कहिंदे आंब की सदर कत मिटत ना आंबली खाए, पिता को प्यार ना परोसी पह पाई है, सागर की निद कत पाई है, पोखर सह दिन कर सार दीप जोत ना पुजाई है। दीवा जागदा है ते कहिंदे सूरज चढ़िया होवे ते दीवा किते सूरज की बराबरी कर सकदा ना जी ना, दिन कर सार दीप जोत ना पुजाई है, सागर की निद का तपाई है तपोखर सह, चंदन सुभासना पलास महकाई है, श्री गुर दयाल की न दया आन देव मैं, जो खंड ब्रह्मांड उदय ਅਸਤ ਲੋਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਜਿੱਥੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੀ ਨਾ ਦਇਆ ਆਣ ਦੇਵ ਮੈਂ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦਾ ਅਸਤ ਲਾਉ ਧਾਈ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪਦੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਬਣਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੇ, ਮਨ ਚਲ ਤੋ

0: महाराज कहते अंदर हर जन सिमरो हृदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे पूर्णता के काम। एक गल होर चेता रखो, जपना जरूर है मुखो पर विरले बसा लेंदे ने, मुखो हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया। विरलिया चो तुसी बैठे हो, महाराज कहते अंतर जपना करो जी।
1: जत पावह मोख द्वार,
0: सवाल कीता जी इस नाम नाल मिलना की है, ता गरीब निवाज कहते जित, जिस करके जित तो भाव जिस करके पावह पा लवेगा की मोख द्वार, तेन मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा, भाव बंधना तो मुक्त हो जाएगा, भाव जमना ते मरना मिट जाएगा। इस करके महाराज कहते ने सलोक समीप सजुज ता कैवल मोक्ष, कैवल हुंदी उहदा रूप हो जाना, उस रूप दे विच मोख विच पहुंच जावेगा, जिन्हों महाराज कहते ने प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक ओ हो पुरख कहिया जीवन मुकत। महाराज कृपा करदे ने कहिंदे बंधना तो भाई मुक्त हो जावेगा।
1: महला तीजा,
0: गरीब परिवार सच्चे पातशाह जी होर बख्शिश वरता रहे ने जी।
1: माया मोह विसारे आ सच मारना हर नाम,
0: कहिंदे माया दे मोह करके परमात्मा नु वसार दिता। माया दा मोह है ही बड़ा है, पर गुरुद्वारे आके माया नु जितिया भी जांदा सारे कहिंदे जी माया बड़ी बुरी है, माया बड़ी बुरी है, तो महाराज कहिंदे भी ने सरपणी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्ण महादेव शलिया, मोर मोर सरपणी निर्मल जल पैठी, जिन त्र भवन डसी अरे गुर प्रसाद डिठी, कहिंदे मारो मार कर दी आई, तो सिख कहिंदा मैं बचन वास्ते गुरु दे चरणा दी शरण विच आ गया। मार मार सरपणी निर्मल जल पैठी, जिन त्रो भवन डसियले गुर प्रसाद डिठी, ओ सरपणी सरपणी क्या कहो भाई, जिन साच पछानिया तिन सरपणी खाई, जिन्हें सच नू पछाण लिया उन्हें वस कर लिया है, उन्हें तो वस कर लिया है। मैंने एक बित चेता आया, भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का, कहिंदे सोई लोहा जग बिखे बिबद बंधन रूप, सोई लोहा कंचन जोत पारस प्रसंग है, सोई तो श्रृंगार शोभत पत व्रत को, सोई अभरण गणका रचित अंग है, सोई स्वांत बूंद मिल सागर मुक्ता फल, सोई स्वांत बूंद बेख भेट तो पुयंग है। अगला बोल वाच पड़ांगा। लोहा तो एक ही है ना जी, ओदियां हथ घड़ियां बन जांदियां ने, संगल बेड़ा बन जांदे ने, लोहे नाल बंदा जकड़िया जांदा है, लोहा ही है। सोई लोहा विश्व संसार बिखे विच बिबद बंधन रूप, पर गुरु सवारी संगत जी सोई लोहा, लोहा तो वही है कंचन जोत पारस प्रसंग है, जदो पारस ना सो गया तो फिर की बन गया, सांभ के रखना पै गया ना, कंचन जोत ओदे नाल बन गया, कंचन जोत पारस प्रसंग है, सोई तो शिंगार शोभत पात व्रत को, शिंगार ते एक ही है ना, भैणा कर दिया ने वक वक ते हुंदे ही नहीं है, वह भैणा पत व्रत वाली भैण भी करती है, जिहड़ी केवल पति दे उत्ते टिकी हुई है, शिंगार होई है वह गणका भी करती है, शिंगार विच कोई फर्क नहीं है, पर करन करन विच फर्क आ जाना है। सोई तो शिंगार शोत पत व्रत को, सोई अभरण, अभरण भी नहीं हुंदा गणका, सोई अभरण करन वाली रचित अंग है, सोई स्वांत बूंद वेल सागर मुक्ता फल, कहिंदे स्वांती बूंद अंबर चों टपकदी है, अगर वो सर्प दी सिरी विच पै जावे, सोई स्वांत बूंद वेल सागर मुक्ता फल, हां कहिंदे जिस वेले सोई स्वांत बूंद मिल मुक्ता फल सिप्पी विच पै जावे, तां मोती पैदा कर देवेगी, है स्वांत बूंद है, सोई स्वांत बूंद भेट तो भुअंग है, भुअंग नाम है सर्प का। अगर सर्प दे मुंह में चले गई तो उन्हें जहर बन जाना। जे लोहा ओही है, ओदिया हाथ कड़िया जंजीरा बनिया, पारस नू छोया कंचन बन गया, शिंगार ओही है, करन करन विच फर्क है, स्वांती बूंद ओ है, सिप्पी विच डिगदी है, मोती पैदा पर कर देवेगी, सर्प दे मुंह च गई है, जहर पैदा कर देवेगी। तैसे माया किरत बिरत है बिकार जग, पर उपकार गुर सिखण सरबंग है। कहिंदे पर उपकारे सिखा नू इह सफली है, ते जेड़े बेकार करदे ने ओह वी सुन लो। इक त पत्तर पर उरकट कुरकट, इक त पत्तर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी को ठनगन वाडा डू, किन है बबेकी काटी तो। कहिंदे इक च शराब प्याला रख लिया, इक च कुकड़ उकड़ू रख लिया, खांद्या पींद्या बस गालो गलाच हो गए, फड़ लो मार लो हो गई है। कहदा कारण है? माया दा कारण बन गया है। पढ़ लो शब्द तुसी बाणी दा, एक त पत्र पर उरकट कुरकट, एक त पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे विच राणी बह गई है। बीच नकट दे कादे करके आई? माया करके आई है। बीच नकट दे रानी, महाराज कहिंदे इहदे करके विवाद पैदा हो गए ने। फिर वचन पढ़ो जी,
1: माया मोह विसारिया,
0: ओदे करके रब भुल जांदा। दसो उथे हुण रब याद आवेगा? जदों परोपकार करेगा माया द्वारे, उदों आखेगा सतनाम श्री
1: वाहिगुरु सच मरना हर नाम।
0: कहिंदे माया दे मोह करके सच गल जेड़ी है ना, मरना ए भुल गई है। नाम भी भुल गया है ते मरना भी भुल गया है। खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम तिहाव, अपनी पत सेती घर जावे ते चेते आउंदा ही नहीं। जे गुरमुखो गोयल आया गोयली, क्या तुस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार। हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार, क्या थोड़ी बात गुमहान चेते नहीं आउंदा। जैसे रहन परा हुणे उठ चल सह प्रभात, क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यो सा फुल्ला की बागात। ओ मेरी मेरी क्या करहें, जिन दिया सो प्रव लोड़, सर पर उठी चलना छड जासी लख करोड़। लख चौरासी भरमतिया दुलभ जन्म पायो, नानक नाम समाल तू चेता रख, सो दिन नेड़ा आयो। मौत वाला दिन नेड़े आ रहा है, ओनू भुलना ते फिर याद रख।

0: हे गुरु जी की पत्नी।
1: सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा में।

हर तू जुड़ी लाव सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निरपहो पहे मन होए हौ मैं मैल गवाया बलराम जियो निर्मल पहु पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहया भरपूरे।

दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन पर रहे, हर का नाम जपत निस्तर। अनेक माया रंग तिख ना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। जेहे मार्ग इहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। अनेक बिघन जह आए सुंगारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जून जन्म मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जप हौ मन रंग, नानक पाइयै साध कै संग। जेह मार्ग के गने जाहि न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जिहे पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा कूना सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महापयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखा मन तुज अकरख, तह नानक हर हर अमृत बरख। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरी जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नोदान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे ना भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन सोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओत सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात इहो हर को नाम, काम तीन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मते फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान हो मैं बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु भाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिर चिर जीवै, महा उदास तपी सरथी वै। अग्न माहे होमत परान, कनक अशव है वरभूम दान। नेवली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी हो मैं मैल न जावै। हर के नाम सम सरकश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते हुटै। सोच करै दिन सो अर रात, मन की मैल ना तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहु ना बिखिया टरै। जल धोवै बहु दे अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। बहुत स्याण पजम का भव व्यापै, अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कूट उप

जाप। अष्टपदी। जब अकार इकर्षण दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन सुमाद तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरख सूग कहो किसे व्यापत, जब आपन आप हो आप पार ब्रह्म तब मोक हां किस होवत परम, आपन खेल आप वरती जा नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी, जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै, आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन तह जन मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगित अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बिन मैलक हो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेखो, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्यागो त्रंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती कर रहो, साधु संग अग्न सागर तर हो, हार तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पाज परमानंद, नरक निवार उधार हो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वाहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन, अमुलिक लाल यह रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महा तुकै माथे, नानक उदरे तिनकै साथे, सरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पए गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव, आल जंजाल बेकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करहु संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होते निधान, सर्व छाता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम सांत रित नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मै ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जमते छुटाए, जा

जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताके बानी, एक नाम मन माहे समाने, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल ताके कर्म, सब ते ऊच ताके शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी।

दूर। कथना कथी नया वै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देता दे लै दे तक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो। साचा साहिब साच नाए।

मन है मन कोई, मन है सुरत हुए मन बुद्ध, मन है सगल भवन की शुद्ध, मन है मुँह चुट्टा न खाए, मन है जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जी को मन जाने मन कोई, मन है मार्ग ठाक न पाए, मन है पात स्यों प्रगट जाए, मन है मग न चल्ले पंथ, मन है धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरे तारे गुरु सिख, मन्ने नानक पवे न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दर गहमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, ताओल धर्म दया का पूत, संतोख ताप रखिया जिन सूत, जे को बुझे हुए सचियार, तबले ऊपर किता पार, धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया उड़ी कलाम, एहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया केता हुए, केता तान सुवाले हो रूप, केती दात जाने कौन पूत, कीता पसावे कुकवाओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाऊ, असंख पूजा असंख तप ताऊ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग।

है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमानी समस्ति निदानी, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद वादे, अनंगी अनामी समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाते, समस्ति बेपूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो वस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साह, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचिदानंद सर्वं परणासी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा बृदकर्ता, अदो उर्द अर्धं अगंग उगहर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अचिदि अपेदि अनामं अकामं समस्तोपराजि समस्तस्ततामं, तीराजोर चाचरी चंद, जले हैं तले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयाचंद, अगाध्य अबाध्य अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्तुंग निरनाथे, नमस्तुंग परमाते, नमस्तुंग गंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोक रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृष्टं, नमो सर्व कृष्टं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अकीजे अपीजे समस्तं प्रसीजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चरपट चंत्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अकल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग लख कर्मं, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग।

वाद उदार सर्व पाल सर्व काल सर्व कूपन काल जतर दतर विराज हे अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नरे कात पुरख उदार मूर्त जौ ना दशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम हीन पेख ता मुह न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान पता एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जाने जे बेद और कतेब रूप रंग न जात पास हो जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चकर बकर फिर चतुर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापी जे जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जी थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्वरच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुखदाय काम आप रूप अमीक अनुष्ट एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंग ही न भंग नात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंत्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनास आजान बाहु साहन साहू

कालान काल अनुभूतांग वाबा अपांग गत मित अपार गुणगण उदार मुनगण प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणा डंड बाड्य चात्री चंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाली चतुर चक्र काली चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र जाने चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अतिशय अदृश्य कृशय भगवती चंद प्रसाद कथते हे आचिज देश के आज पिशह के आ गंज कर्म के आ पंज पर मैं के आ पिज लुक है के आदित सुख है के अवतूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रिजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक बया वह कि जय भूल गय वह कि अफुल गुनाह है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांत है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र जाने है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान्य है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कलिम है कि परमंग फहीम है कि अकल अलम है कि साहिब कलाम है कि हुसनल वजू है तो मामूल रजू है हमेश सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल फरस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तभी जुलतमा है रजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाइक यकीन है अनिकल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्वाद स्वरूप है आजाद है अनूप है ओंगाद रूपे अनाद ओंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिपंगी अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिभर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है छिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंद है अबंद है अभगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजाद है अजाद है चिरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
परमात्म परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी सरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं सरी कह मितो अमी कह सदैवं प्रभाहे अजय है अजाह भगवती चंद्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्नुल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हीरासुल फिकन है कलंकं परनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रनाश है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हमीसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अरीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधीशुल अलेख है हमीसुल अपेक है जमीनुल जमा है अमी कुल इमा है करीमुल कमाल है के जरूरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मत पार चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम मरवर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचे जीवांगु आसन अपांग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विश अपांडो जल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनास त्रितर तुरा साजान बाहु इक्कै सुदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात आज इजना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अंड टपार आडीट धर्म अतटीट करम अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतव प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर हैं सर्वंकर हैं सर्वपाश्य हैं सर्वनाश्य हैं करुणा कर हैं विषम पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं कलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं तपा तप हैं कृता कृत हैं मृता मृत हैं अमृता मृत हैं करुणा कृत हैं कृता कृत हैं धरणी त्रित हैं अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत हैं मृता मृत हैं अजपा कृत हैं मृता मृत हैं नरनायक हैं कलकायक हैं विश्वम पर हैं कुरुणालय हैं नृप नायक हैं सर्पायक हैं पपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है।

आनंदमई मंगलमई बतीत करवाउणा गरीब नवाज। बेअंत संगतां वल्लों संगरांद दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं आप जी के चरणां विच अरदासां बेनतियां कीतियां गईआं। बेअंत माया अरदास

जी की फतेह। सत्कार्यो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो अमृत वेले गुरु दरबार दियां हाजरियां पर रखे हो। सतगुरु जी सबना दियां हाजरियां दर प्रवान करन, दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके निवाजन। अज संग्रांद दा महीना है, सौन महीने की प्रारंभता हुई है। आप जिया ने बारह माह विचों सावन महीने का जो सतगुरां ने उपदेश दिता है, पावन शब्द सरवण किया है। पंचम पातशाह जी ने अपनी रसना तो इस पावन बारह माह बाणी उच्चारण की है। सतगुरु जी कृपा करते ने सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। कामणी का भाव होंगे जीव रूपी आत्मा औरत। गुरदेव पिता महाराज जी कहते सावन का महीना बहार का महीना है, बरखा का महीना है, हरियावल का महीना है। भाव ही है कि सतसंगत रूपी सावन के महीने अंदर बहार अंदर जो भी जीव आत्मा वाहिगुरु के चरणों नाल प्यार पाती है, सरसी सरसी दा अर्थ है वह रस नाल भर जाती है, आनंद नाल भर जाती है। भाव जिन्ना जीव आत्मा ने अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों नाल प्यार पाया है, उन्हों का हिरदा सावन के महीने राही रसा वर्गा हरिया भरिया खुशियां वर्गा हो जाता है। मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। जिन्हां नूं एक अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम का ही आसरा है, उन्हां दा मन तन नाम दे विच रंगया जांदा है। विख्या रंग कुड़ियावया दिसन सभे छार। ते जिहड़ा झूठा रंग है, विकारां दा रंग है, भाव संसार दा रंग है, उह छार हो जांदा है, सुआह हो जांदा है। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवनहार। जिवें सौण दे महीने विच सुवंती बूंद डिगदी है, बबीहा ही पींदा है, कहिंदे इसे तरह वाहिगुरु दियां रहमतां बख्शां हर थां ते बरस रहियां ने, पर कौन नाम रूपी सुवंती बूंद नूं प्राप्त करदा है। मिल साधु पीवनहार जिन्हां नूं गुरु मिल गया है, जिन्हां नूं गुरमुख प्यारे मिल गए ने, जिन्हां नूं सतसंगत मिल गई है, उही सतसंगत की बदौलत नाम रूपी सुवंती बूंद नूं प्राप्त कर सकते ने। ते जिन्हां नूं सुवंती बूंद प्राप्त हो गई, वण तिन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख अपार। उन्हां दा तन मन जिवें वण तृण भाव सारा जंगल घा बूटे हरे भरे हो जाते हैं। बारिश पैण दे नाल अमृत बूंद मिलन दे नाल जीव दे सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे उहदियां अखां भी पवित्र हो जांदियां, उहदे नेत्र पवित्र हो जांदे, उहदे कर्ण पवित्र हो जांदे ने, उहदे हथ पैर सारा शरीर पवित्र हो जांदा है जिहदे कोल परमात्मा दा नाम है। इस करके दतार जी कहिंदे नाम नूं जिन्हां नूं नाम दी कीमत पता है, हर मिलणा नूं मन लोचदा कर्म मिलावन हार। उहनां दा अंदर परमात्मा नूं मिलण लई लोचदा है, पर वाहिगुरु की बख्शिश कर्म का भाव इत्थे है। बख्शिश वाहिगुरु की बख्शिश नाल ही हरी नूं मिलिया जांदा है। जिनी सखीए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार। जिन्हां गुरमुखां ने वाहिगुरु नूं पा लिया है सदा उन्हां तों वार ने बलिहार ने जाइए। नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार। ये अरदास करिए हे वाहिगुरू हे हरी मेरे ते मया कर कृपा कर, मैनू भी अपने नाल मिला लै, क्योंकि जिन्हां नूं तूं मिला लिया सावन तिन्हां सुहागणी जिन्हां राम नाम उरहार। जिन्हां ने अपने हिरदे विच परमात्मा दे नाम दा हार परो लिया ओ जीव आत्मा सदा सुहागणा ने, उन्हां दा कंत कदी भी जगत संसार तो कूच नहीं करदा। वाहिगुरु अविनाशी है, वो जीव आत्मावां गुरमुख सदा सुहागण हुंदे हन जिहड़े परमात्मा दे प्यार विच जुड़े रहिंदे ने। सतगुरु जी कृपा करन सानू दरों करों नामदान गुरसिक्खी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके निवाजन जी। भाई साहब भाई तारू सिंह जी शहीद भाई तारू सिंह जी अज उन्हां दा भी शहादत दिहाड़ा है, जिन्हां ने पापी जकरिया खान दे जुल्मां दे नूं सहारदे होए ईन नहीं मन्नी अते अपनी सिक्खी नूं केसां सवासां नाल निभाया, अपने खोपर नूं उतरवा लिया पर अपने केसां नूं नहीं उतराया, सिक्खी तों मूंह नहीं फेरिया। इस करके असीं सदा उन्हां नूं अरदास विच याद करदे हां कि जिन्हां अपनी सिक्खी नूं केसां सवासां नाल निभाया तिन्हां नूं सदा याद करके आपां वाहिगुरू दा नाम पुकारदे हां। सो भाई साहिब भाई तारू सिंह जी नौजवान अवस्था विच उन्हां ने लाहौर की धरती ते जा करके अपनी शहादत दिती, उन्हां दी शहादत नूं वी कोट्यान कोट प्रणाम है। सतगुरु जी कृपा करन साडे हिरदे अंदर साडे पुरातन ते नवीन गुरसिखां दी शहादतां वालियां दी शहीदां दीयां यादां प्रेम सदा बनिया रहे।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਿਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खा।

पैवे सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैवे चटाणी आकाश पैवे जोत महाबल सूर पैवे चावह जावह पूर सगलिया पौ लिखिया सरलेख नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला।

0: कहो निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान। सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ निरण जना मचाओ। सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत आनंद। लाटू मधानिया अनगा पंखी पौंदिया लै नसा। तुए चढ़ पवई अजन नानक पौंदिया गणत नान।
1: बंदन बंद पवाए सोए पै कृत नचे सब कोई। नच नच हसे चले से रोए। उठ न जाए सदना होए नचन कुदन मन का चाओ। नानक जिन मन पाओ तिन

0: कूड़ रह गया पार को
1: मथे टिका तेर धोती तो खाई हस्त्री जगत का साई नील वस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण अपा क्या कर पुटा।

तरन तारन हर निध दुख न सक व्याप। गरीब निवाज सतगुरु जी बख्शिश करते ने, दीन जेडे गरीब बन जाते, गरीब दर्द तकलीफा दुख निवार महाराज उन्होंने दुख दलिद्र तकलीफा निविरत कर देंदे ने। जा को मुश्किल अत बना ढोई कोए ना दे, लागू होए दुश्मना साक पी भज खले, सबो भजे आसरा चुके सब असराओ। चित आवे ओस उस बंदे नू जिनू दर्द हो रही है, जिनू दुख आ गया है, जिनू घड़ी औखी आ गई है, चित आवे ओस पार ब्रह्म ता लगे न तत्ती। वाहो तत्ती वाह तो भाव महाराज दुख की घड़ी नहीं वेखण दंदे। लगे न तत्ती वाओ साहेबो न ताणिया का ताण, आए न जाई थिर सदा गुर शब्दी सच जान। जे को होवै दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवै ना को देवै धीर। स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्म ता नेह चल होवै राज। राज नेह चल जड़ा चलाए मान नहीं हुंदा। जड़ी घड़ी ध्रुते आ गई सी बड़ी औखी घड़ी आई, जदों बाप दी गोद विचों मतराई ने चपेड़ा दड़ दड़ करके सजे खब्बे पोलियां पोलियां गल्लां ते मार दतियां, बड़ी औखी घड़ी आ गई। पर निश्चल हुआ राज जदों नाम वल्ले आ गया, गुरु दे वल्ले तुर पिया ते राज अटल मिल गया। प्रहलाद ते औखी घड़ी आई तां महाराज ने ओदियां औखियां घड़ियां नूं टाल दिता। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पचहारे, की करदा जे कहिंदे राम कह करताल बजावे चटिया सबे बिगारे। आप दे विगड़े बाकी लड़के भी बिगाड़ दते ने। राम नामा जपबो करे हिरदय हर जी को, सिमरन धरे मां कहिंदी है प्रहलाद दी, कहिंदी काका सुन वसुदा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पटरानी। पूत प्रहलाद कहा नहीं माने तिन तो और ठानी दर्द। फिर की होया दुष्ट सभा मेल मंत्र पकाया, करसे औद कनेरी गेर तार जल ज्वाला पै राखियो राजा राम माया। फिर ही महाराज ने कौत की ऐसा वरता दिता, दुख लगन ही दिता, दर्द दूर कर दिता है। गरीबा नू नवाजन वाला है, ताई ता गरीब नवाज कहिंदे ऐसी लाल।

मन न व्यापै, आठ पहर गुण गावूं, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बाहुड़ जन्म ना छापन।

तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखै पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया, ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहिंदे ने जिस नूं मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनु पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नु मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। ये तो एहो जी बख्शिश हो जाए। पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन। तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी, ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए, ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई हां, दोष्ट दोखियन पकड़ पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने, दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता, ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास द्वार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आखदे ने जिहदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान, आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई, साडे धर्म दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।